0: आबाजी तोर बाजा आ गए मुटीगंज के राजा।
1: ए बेटा, तुम्हारी हैसियत के डीजे वाले रोज

Song heter Brooklyn. आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से हरिगोविंद बाबा हाईटेक, सामने से हट जाइए, अब मैं डीजे पे कदम रखने वाला हूँ।